0: नहीं मैं क्या देखी ना, ये देखिए मेरा टिकट।
1: Strange, but I'm sorry, 125 has taken off.